और परिवार हर दम वाहेगुरु दे चरणा विच अरदासां बेनतियां करता रहिंदा है कि दाता जी कोई चंगी चीज बख्श दिओ। हुण गुरु प्यारिओ चंगी चीज दरअसल मनुख जिहड़ा खास करके पंजाब हिंदुस्तानी जिहड़े आ ना वह खास करके पुत नूं समझदे, पुत भावें रोटी दवे जां ना दवे वह बाद दी गल है, पुत भावें बिरध आश्रम दे विच छड्डे आवे ते धीआं गुरु प्यारिओ पंज पंज पुत्तां वाले मापे अज बिरध आश्रमां विच असीं बैठे देखिओ तुसीं भी जाण दिओ ते हुण सानूं पता लगा धीआं दी की अहमियत हुंदी है। हुण बजुर्गां दीआं ओह डंगोरियां धीआं बणदीआं है, बापू मे बेबे जे तैनूं मेरे वीरां ने नहीं सांभिआ ते चल आ तैनूं मैं सांभदी आ, मेरे विच वी तेरा ही खून है। गुरु प्यारिओ इदां साडे मापिआं नूं असीं रुलण वास्ते जिन्हां ने जिन्हां मापिआं ने बड़े चावां नाल पुत्तरां नूं पालिआ हुंदा है ते आखरी टाइम सतसंग जी कुछ नहीं चाहीदा हुंदा उहनां नूं, की चाहीदा है बजुर्ग बापा 80 साल दा बजुर्ग की चाहीदा उहनूं, दो रोटियां, काम तो आया पुत मंजी दे उत्ते बेबे दे कोल जां बापू दे कोल बह के पुछ लवे बापू अज तेरा दिन किवें निकलिया, बेबे तू ठीक है, सारे दुख दूर हो जांदे आ। गुरु प्यारिओ कालजे नूं ठंड पै जांदी जे किते पुत इह पुछ लवे, पर गुरु प्यारिओ अज पुत अद्धे इक पंजाब दे ते नशियां दे नाल गर्क हो गया, मापिआं दा किहने पुछणा सी। सतसंग जी पंजाब चों आए आ, पंजाब दे रोणे इत्थे आपां रोवांगे, पंजाब दे विच साडे नाल की हो रहा, किवें धक्केशाहियां हो रही, सरकारां उत्थे की कुछ कर रही। मैं एक दिन स्टेज दे उत्ते आ गल कर रहा सी बई पंजाब दे विच नशियां ने गर्क करती साडी जवानी, विचों एक सज्जन मैनूं बाद च कहिंदा, कहिंदा ज्ञानी जी इत्थे भी नशे बहुत है, इत्थे कदे नशियां दी घट भरमार आ, इत्थे भी नशे बहुत है। मैं क्या बहुत होणगे, मैं बिलकुल असीं देखदे आ जदों किते तुहाडे शहरां दे विच लंघीदा ते उहनां दे इक वक्खरे कैंप बने हुए आ और उत्थे बिल्कुल वह लोग नशे करते हैं। पर मैं दूजा उन्होंने भी सवाल कर दिता, मैं क्या वीरा सरकारां नहीं नशे विकाउंदियां, लोग आप खरीद के पींदे ने, समगलर जिहड़े वह वेचदे आ, ते कहिंदा बथेरा कुछ चलता जी इत्थे। पर मैं क्या मेरे वीरा तुसी अज तक इदा तो नहीं देखा होगा कि पुलिस अपनिया गड्डिया के नशे इतने वेचती हो, कहिंदा हो इदा तो नहीं देखा। मैं क्या पंजाब ये कुछ हो रहा तुहाडी जवानी नूं खत्म करने वास्ते, मानते हैं नशा हर एक देश दे विच है, पर जो पंजाब दे विच साडे घरां दे घर वेले होगा इदा के परिवार तुहानूं टक्करनगे। सुल्तानपुर लोधी दे विच एक परिवार सी, एक मां पिट पिट के कह रही सी मेरे पंज पुत सी पंजे ही नशे की भेटा चढ़ गए। हुण गुरु प्यारिओ आ कुछ साडे पंजाब विच हो रहा, यह रोने नहीं तो होर की है। और तुहानू पंजाब दीआं गल्लां ते तुहाडे आ गल्लां असीं उत्थे जाके करी दीआं कि सज्जनों जे सिक्खी सरूप सांभे हुए आ ते साडे विदेशां विच भरावां ने सांभे हुए आ, साडे सरदारां ने सांभे आ, साडियां भैणां ने अपने छोटे छोटे बच्चियां दे सिरां दे उत्ते केस रख के, नानियां ने दादियां ने उहनां नूं सोहणी पंजाबी पढ़नी गुरमुखी पढ़नी सिखाई हुई है। मैं दाद दिंदा हुंदा सत्कारयोग भैणां दी कि भैणो तुसीं इसे तरह यतनशील रहो, तुहाडे उत्ते बहुत वड्डी आस करदे आ, छोटे छोटे बच्चे सिरां दे उत्ते दमाले सजाए हुए इत्थे आके असीं दर्शन करदे आ ते मन बागो बाग हुंदा है। गुरु महाराज कृपा करे तुसीं सिक्खी नूं सांभी रखियो, तुहाडियां वडियाईयां करदे आ। गुरु प्यारिओ फोकी वडियाई नहीं, जो कुछ देखदे आ उह कुछ उत्थे जाके पंजाब विच दसण दा यतन करीदा ते पंजाब दीआं गल्लां तुहाडे नाल। हुण सतसंग जी घर दे विच नवां जी आउण वाला है और अरदासां बेनतियां करदे आ। घर दे विच जदों कोई नवां जी आउण वाला हुंदा सी ना और उहनां समयां दा इक रिवाज हुंदा सी के बच्चे घरां दे विच पैदा हुंदे सी, अज ते बोर्न जिहड़ा हस्पतालां विच हुंदा बच्चियां दा, लेकिन पंजाब दे विच जां उहनां देशां दी आपां जिथों आपां आए आं उत्थे दी गल करदे कि बच्चियां दे बोर्न घरां दे विच हुंदे सी ते कुछ क बीबियां हुंदियां सी उहनां नूं दाईयां आखिया जांदियां सी। अज दे न्याणियां नूं बच्चियां नूं नहीं पता दाई की हुंदी है, जिहड़े मेरी उमर दे आ मेरे तों वड्डे उहनां नूं पता कि दाई दा की रोल हुंदा सी। ਇਹ ਗਰੀਬਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੋਰਨ ਇਹ ਘਰੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨੱਪਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜੱਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਸਿਰ ਦਾਣੇ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।

प्रकाश हे मेरे सतगुरु जी मेरे हिरदे विच नाम दा प्रकाश कर दियो क्यों जी गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रस मेरे जीवन दी रीति बन जावे ये मेरे जीवन दा मुख अंग गुरु दा शब्द बन जावे गुरु कृपा है प्राचीन पंथ प्रकाश दी कथा रोजाना गुरु खालसे दा इतिहास जड़ा उहदी सांझ बनदी है गुरु सवारी संगत जी कल दे दीवाना अंदर आप जीयां ने प्रसंग सरवण कीते सन जिस वेले

प्यारे सतगुरु जी, वड्डे सतगुरु जी, कृपालु जी, दयालु जी, चावर छतर तख्त दे मालक, सबना दे पालनहार, सबना दे सृजनहार, सबना दे बख्शनहार, सबना दे दुख सुनने वाले, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ, शुकराना है प्यारे जीओ, आप जी ने अपनी साध संगत विच सज्जन दियां कुछ घड़ियां बख्शियां। आओ गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सब सतगुर प्यारे जी दे दर ते अपनियां हाजरियां लवाईए। सब संगतां नूं बेनतियां हन प्यारे, आप जी अपने हाथ जोड़ो।

पर तू जमेगा, फिर जमेगा, फिर मरेगा, फिर जमेगा, फिर। बहुत का की मतलब है जी, बहुत गिनती नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है। ये नहीं क्या पांच जन्म, ये भी नहीं क्या दस, ये भी नहीं क्या सौ। बहुत दा पता ही नहीं भी जदों वो वुड़ी कलाम चलना है किधरों किधरों चले जाना है, पता ही नहीं तेनों किन्ने के जन्म केड़ी खेड़ च भोगने पैने हैं। कहिंदे जन्म मरै बहु जोन परमावै।

फिर अपने अंदर झाती मारीए। अक्सर धन ना होवे ते अंदर दा हंकार मर जांदा है, ते धन आ जावे ते रातों रात ही बंदा बदल जांदा है। भूमि धन दा ही हिस्सा है, कहिंदे जेड़ा इस चीज इन दातां दा शुकराना। वेखो प्यारे, दातां ते चाहीदियां है, दातां ते चाहीदियां जीवन लई, घर बार सब कुछ चाहीदा है, पर जिहड़ा इन्हां दातां नूं वेख के शुकराने च जावे ओह तां प्यारे नूं ठीक है याद कर रहा है। पर अक्सर ये चीजा ना, ये माया जित हर वीसर है, ये माया रूप वरत जांदे हन, सानू प्यारे नालों तोड़ दिंदे हन, प्यारा भुला दिंदे हन। मोह उपजे भाओ दूजा लाया, माफ करना एक कौड़ी जी गल कह दी इथे, जीवन का तजर्बा है। 26 साल हो गए विदेश गए नूं, असी भी स्टूडेंट गए सी, बुरा नहीं कहन लगे किसी नूं भी, पर की करिए सच मिठा हुंदा ही नहीं, सुनिया ही नहीं बचपन तो भी सच मिठा हुंदा है। हुंदा की है, जिन्ना चिर अजे पक्के नहीं होए रोटी पानी, असी खुद गुरुद्वारा साहिब प्रशादा छकन जाते होंगे सी, इस करके स्टूडेंट नूं बुरा नहीं कहन लगे। पर दुख इस गल का है कि 5 साल अजे पक्का नहीं होया, घर नहीं ले, 5 साल तो इस दर से आना है। जिदन घर अपना मिल गया, गड्डी मिल गई, नौकरी हो गई, कहिंदा गुरुद्वारे की रखिया है, नहीं तो जिनी अपनी कम्यूनिटी इन्हां देशां च इस स्थान ते ते भावे दोपहर दे 12 बजे आ जाओ, इत्थे ते थां मिलना ही नहीं चाहिए। वेखो ना किन्नी कम्यूनिटी ते किन्ने क स्थान हन। एक ये भागां वाला शहर है कि इन्होंने लड़ भिड़ के बहुते गुरुद्वारा साहब नहीं बनाए, नहीं तो जो दूजे शहर च जाइए ना, दूजी तीजी गली दे विच भी दूजा स्थान बना के बैठे। महाराज जी तरस करन, इदा ही रखन। महाराज जी तरस ठीक है, लोड़ां वध दियां, परिवार वड्डा होवे ते कमरे ऐड करने पैंदे, सारा कुछ वह बखरा चैप्टर है। पर दुख की गल है कि यह जिहड़ा गुमान है ना धन ते भूम दा, यह लै जांदा है प्यारे जी तो दूर। वह कोई भागां वाला बचता है 100 तो 1 का, जिहड़ा धन आउण ते भी प्यारे नूं नमस्कार करन आउंदा है, नहीं तो 99 गुरुद्वारा साहब आउणा बंद कर दिंदे। जिन्हां देशां च स्टूडेंट नहीं आ रहे, वह देशां दे गुरुद्वारा साहब खाली पए हन प्यारे। असी अमरीका पिछले साल एक शहर च प्रश्न पूछिया सी, सब बजुर्ग बैठे, असी क्या बजुर्गो 20 साल तक शायद तुसी ते असी इस दुनिया च नहीं होवांगे, इत्थे 15 साल तो 40 साल का नौजवान बच्चा इस देश का वशिंदा वह नहीं आ रहा गुरुद्वारा साहब च, आप जी भी देख लो। असी क्या फिर अज तो 20 साल बाद इस इन्ने सोहने दरबार च कौन बैठा होया करेगा, कदे सोचे सिर जुड़ के आप। आ खेडां वापरनियां है, धन

महाराज जी कृपा करन, सतगुर प्यारे जी सानू ये बख्शन। संगत जी, संगत च आउणा सुनना ये एक पक्ष है। वेखो स्कूल च गए सारे, स्कूल च टीचर कोलो सुन लिया है, पकाया नहीं, पका के कमाया नहीं, जिदन पेपर आना उदन नंबर जीरो हो जाता है। आज सिख लिया प्यारे जी कोल, इस नूं अंदर गंढ बन के रखना है, संभाल के रखना है कि प्यारे जी ए ना होवे आ 84 लाख जून इन्ने तरलियां तो बाद च ये जन्म मिलिया है, ते सिर्फ होमे करके, सिर्फ आ थोड़े सालां दे दिखावे करके। ते जे वेख्या जावे ना, मैं एक गल माफ करना भी सच है, क्योंकि महाराज जी ने सारे इंडिया की यात्रा जो कराई ना, जिस लैवल ते दिखावा शो ऑफ असी पंजाब च रहन वाले कर रहे हैं, उस लैवल का शो ऑफ तुहानू बहुत आत विच नहीं मिलेगा। पंजाब हरियाणा सेम लैवल ते है जी। बड़ी हैरानी की गल है, हैरानी की गल है कि जिन्हों को गुरु का उपदेश नहीं है वह जीवन बैटर ज्यो रहे हैं, तो जिन्हों को सतगुर का उपदेश है, पर माया ने ऐसा चक्कर चलाया है कि उहदे विच प्यारे जी की गल चेते भी नहीं आती। प्यारा कित्थे नजर आता है? जदों उस कहा सी ना, हुणे सो मूर्ख अंधा अग्ञान, जदों अंधा हो जाता है ना, वो कहिंदे ना माया धारी अत अन्ना बोला। अच्छा, बड़ी हैरानी की गल है, महाराज कहिंदे माया धारी आ जाता है पर अत अन्ना है, कल्ला अन्ना नहीं। अच्छा महाराज जी, अत अन्ना की होया? कहिंदे अन्ने नूं ते समझा दिए ना कि चल मेरी बांह फड़ के तुर पा, वो ते इत्थों तक भी नहीं है सकदा कि किते गुरु की बांह फड़ के एकदम ही तुर ले। ये अत अन्ना है, ये इन्ना भी तुरन लगे डिग पैंदा है, ये बोला इन्ना ज्यादा है कि शब्द ना सुनी बहु रोल कचोला। शब्द सुन दा फायदा तां, शब्द दा लाहा तां, जो उसनों अपने हिरदे च वसाईए, उसनों हिरदे च वसा के अरदासां करिए। इसनों अभ्यास कहिंदे प्यारियो, एक पंक्ति एक शब्द नूं एक मिशन नूं लैके अपने प्यारे दे दर ते कमाउणा शुरू करना। वेखो, मैथ्स पढ़ता है बच्चा, ट्यूशन रखता है, ए बी सी डी किन्ने औड़ पौड़ करता है, तो फिर सोहने नंबर लै जाता है। असी औड़ पौड़ जिन्ने हो सकते इस शब्द नूं अपनी स्क्रीन ते प्रोटेक्टर ते ला के रखिए, बार बार महाराज जी दे बोल पढ़िए, किसी तरीके जॉब ते प्रिंट करके ला लीए, जिथे टेबल है कमरे च प्रिंट करके लाइए कि प्यारे जी दे ओ बोल जिहड़े बार बार बार बार मैनू रिमाइंड करन, आ जा घरे, आ जा घरे, आ जा प्यारिया, इत्थे आके टेके बैठ ना, बहुता इस दुनिया दे दिखावे।

प्यारे सतगुरु, न्यारे सतगुरु, दातारे सतगुरु, बख्शणहारे सतगुरु, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। तरस कीता आप जी ने, महाराज इन्ने सोहने बोल सानू सुनाए, आप जी कृपा करियो असी कमा सकीए। प्यारे सतगुरु जी गुरबाणी अगाध बोध, आप जी दे बचन साडे समझ च नहीं आउंदे। तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी, राम कृपा करियो आप जी, होइयां भुल्लां बख्श लियो। कल नूं इत्थों ही आप जी ने बख्शिश करनी, आप जी दे विचारां दीआं सांझां इवें ही चलदियां रहण। निरंतर आप जी दे बचन सुनदे रहिए, निरंतर आप जी दे हुक्म कमाउंदे रहिए, ते आप जी दे चरणां नाल निरंतर जुड़े रहिए। ऐसी बख्शिश करनी गुरु प्यारी साध संगत जी, होइयां भुल्लां बख्श लैणियां। गज के

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सीती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवी। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप। जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ। दर्शन दीदार जी का ध्यान तर के बोलो जी। पंज प्यारे चार साहिबजादे चाली मुकते।

बंधन काट करे मन निर्मल पूरन पुरख विधाता रहाओ। नानक प्रभु अविनाशी ताकी सेव न बिरथी जासी, आनंद करहि तेरे दासा जप पूर्ण होई आसा बिलावल महला पंजवा। ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न पाई।